आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: pues abajo con culeni con mezcla con merengue.
1: Ah, es en mi pone, tengo en que ne, ten ti mu para tener ni más can asla ya de mava, ni to. Ah, es ma, hinga, ten con mezcla ve pone la.
0: Ten bosque la vez ya la tiran algo ni.
1: Dive himi bos film gela hota to kombe lave bes rangalwan
0: rangalwan
1: ho kombe lave se gan nani hadale nornan ehme jahal de na vara ufave je baddal ve madis wan enge baddal wan harme
0: ah baddal wan irat kore mi yaho me har us me rahi hore je hawa baddal wan
1: to ah masle ne enge inga lava jahala ne vara ufave je baddal ve wakela
0: okay
1: अजला के मेरी रिक्वेस्ट है कोई तो मिस्टर क्याल देना हाय शाह जहाल अदीब अरजीत सिंह के गेरु आई लव ओए जे यार वर आडो हाला है तो मैसेज में कॉल ली गेरु आ दो गेरु आ उन नम वाण और ना ने गेरु और जहमन ए मिदल अब इवा दिस बद दो कॉल दान मेको तो मैसेज के जरिए हम इस लवे के रिक्वेस्ट कॉल मुंगे फुर्सत ली बेने गार जहान ने शोगा बैवेर वा मैसेज कुरवेन मिहार गाइडिंग दिह गडी 40 मिनट एगार जहां वर वागु तो आदि है बे मे वागु तो के बेनो हिफा लावा मैसेज कॉल

जब खुदा किसी को बनाता है ना, तो उसमें कुछ खास बात होती है। लेकिन खुदा ने अदा को बनाया, इसीलिए वो खास बात खुदा में।

আসসালামু আলাইকুম নদীকে মেঘাটস টিভি এফএম গেম মে হাই হুন তরেনা বারং উফাবরি বার বাজরুগত কুলাকং এদমং মিগেডি গালগমনে কুরিয়েগেন্দা শাবিয়েনে মিসেস লাগে মিরিয়েগে শো ইয়াকিগে মে বদল কুলেগুন মিজনা অগমনে শাবিয়েনে মিসেস লাগে শো তা মি খাস কুরেনে দিবেহি বহা আদবিয়াত দে অগমনে হাম কমমে হফতা বান্তক খাস ক কুরিয়েগেন্দা শো এ মি শো ইকি বারুমগে ফুরসত অগমনে গে হুন তরেনা সুলওয়ালান কুরিয়েগেন্দনি আব্বা মি বদল ওয়াই হুন তরেনা দিবেহি বহা আদবিয়াতং বাই সওয়াল তা কল্লা দে জবাব রাঙ্গল কুরবিজি কমগে ওয়ানামা হুন তরি আইদে লাউস কে নেস্তিগে শো কুরিয়েমেগে ನನಿದೆ ಮೇದುಗೆ ಮಿಶೋಗೆ ಸಮನ ಅನ್ನೋಟ್ ಕುರುಮಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಮಿಹಾರು ಫಿಶ್ಕ ಮೇತಿ ಹುಳುವ ಲೈಫ್ ಡಿ ಎಫ್ ಎಂ 91 ಮಿ ಪೇಜ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕುರವಾಣಿ ಪಿ ಎಸ್ ಎಂ ಎ ಆಮೆ ದುರುಕು ಫಶಾಣ ಲವೇಕು ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಎಹಿ ದೇನು ಹೇಗೆ ಮೇಗೆ ರಿಮಿಕ್ಸ್ ವರ್ಷನ ಕೊ ಅಳ್ಗು ನಂಗೆ ಮಿರೇಗೆ ಮಿ ಶೋ ಮಿ ಫಶಣಿ ಲವೇ ಫಹು ಶೋಗೆ ಅನ್ನೋಟ್ ಕೊಲ್ಲ ಬ್ಯಾವರಿಂಗ್ ಸಿರೆ ಬ್ಯಾವರಿ ಕಾಯಕಿ ಅಳ್ಗು ಬಂತು ಕುರಾಣಿ

0: ओके ओके दो कुरियत दामा वगुत जेसी
1: चावी ने सुकून नहीं मैं दो
0: हाँ
1: बारंग अवह मशा रक फुक फक
0: देंग हम नुकी गे ने विस नोने नो दो वाले एनो हम तियो किया ले बुनी एनो फर्स्ट बस क्या फी है मिहारुस ओके दें सवाल को लाड़ेंगे मिसवाग जब इस देखेंगे
1: या
0: दिवे ही बाहुंगे मैं फुरत मल्दी उनो दिगु वाहा के की कोबा कंबुने देवेंगे दिवे ही बाहुंग एम मैं फुरत मल्दी उनो दिगु वाहा के की कोबा है
1: या
0: है
1: कोबा ऑप्शन है नूदे तो त्याग का
0: ऑप्शन है असलो नूदे आ
1: रिवायत मोसा वाजुले
0: वाव वाव वाव वाव वा। ए हाल फारिते मिजुआ ना मतीन कुल्ले का कुरी महादाने नुहुन्ना ने करने गे इंगे
1: ए रागालो तो मिजु
0: साथे के नो बराबर कौन की हाँ यागी को तिदे ने देंग नुबायस मेगडी के फोन बेबी मकरने का नुबे बुनाने
1: तो यार हम ये में नुबा है ना
0: ओह अस्सु संबारा
1: रागालो
0: बराबर बराबर ओके हिंगा हम दें मिहार दें दियो ते हम लवा असला विस जहाँ दे हिसाब गोइंग के मिहार तेरे हम देंगे निस्ते विदान
1: वारंग एक कला मी उसूला एक गो तत्व
0: आ मी का मिहार दें मिजु हम दर दी वेगे नोनी आरंगल वहाँ वेगे ए दे नार नार मिहार दें हम जवाब रंगल कुरी ताती दो
1: या
0: हम कौन लवे गे निस्ते
1: मी मैं
0: टॉय के फुराने
1: नेदो
0: दें बुना को तदें नेदो नेदो की वो देंगे उतास बुना है टॉय के आ थीला बहन नहीं कम हिम बैवड़ लवा दो ए भूरेंगे
1: बैवड़ लवा वैसे
0: हाँ दीनार ए बैं हंगुरा में बैं हीनु करे चे मूसुन नेतस दो खा लालो बीबी
1: हितुगा बैं तो हितुगा
0: हाँ मत दें लिस्ट तो की मत इबुनी हितुगा है नेते कबीर सिंह के लोईबा
1: कबीर सिंह दो
0: हां उरिया
1: एक कला हां और इश्की इश्की दो
0: या वरे इश्की दो ओके हम लव अगेंस्ट एनेंगे वरे उफावरी वरे बाजे वेरिया कह देंगे मिजो के फरातो सम सोलमेट वरे वरे उफावरी उफंदो हक वे से देंगे बुनेचे विश कुरिए एंगे
1: या अडुई वेने नो
0: हां अडुई वेने दो
1: या
0: ओके लव अगेंस्ट एनेंगे नो या